संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी कुंदा ताडगे और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति पर गीत समूह स्वर में। ये रचना है एन के बहरे की।

अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर गीत सुना, जिसके रचयिता थे एन.के. बेहरे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अंजलि केळकर के स्वर में।

अभी आपने आरती ठाकुर के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजय कुमार मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर यशराज वादन. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning, we present a Hindustani instrumental recital, followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a recital on

0: अभी आप राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनुजीत राय चौधरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजय कुमार मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए हम आपको सुनाएंगे राग तोड़ी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बरधान। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर ख्याल। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार।
1: You were listening to a recital on the Esraj in the Raag Jaunpuri. Our artist was Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla was Sanjay Kumar Mukhopadhyay. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a khayal. Listen to a khayal in the Raag Todi. Our artist is Vramanti Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Ashish Mukhopadhyay and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a khayal in the raag Todi. Our artist Vramanti Sarkar.

0: अभी आप रागतोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे भरमंती सरकार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धान। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज भ्रमंती सरकार। Accompanying our artist on the tabla was Ashish Mukhopadhyay, and on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुंवर राजेंद्र सिंह का स्वरलीन वादन. प्रस्तुत है राग चंद्रकंस. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित मदन मिश्रा. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट स्वरलीन वादन बाय कुंवर राजेंद्र सिंह. ही प्रेजेंट्स राग चंद्रकंस, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा.

ये था राग चंद्रकोस। आप सुन रहे थे कुंवर राजेंद्र सिंह से स्वरलीन वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे पंडित मदन मिश्रा। आइए सुनते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। प्रस्तुत है राग तुलसी कोस। इसमें आलाप जोड़ झाला तथा धमार ताल में निबद्ध गत प्रस्तुत है। दैट वॉज राग चंद्रकोस। You were listening to Swaralin recital by Kuwar Rajendra Singh. He was accompanied on tabla by Pandit Madan Mishra. We present Surbahar recital by Pandit Kartik Kumar. He presents Raag Tulsi Kaus, in which he plays Alap Jodh Jhala and Gat in Dhamar Taal.

ये था राग तुलसी कंस। आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग तुलसी कंस। यू वर लिसनिंग टू सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभिया अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: राग भूपेश्वरी। वी कम टू द एंड ऑफ द

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बाबूलाल गंधर्व.

का बेला बहार वादन प्रस्तुत है राग गुजरी तोड़ी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं शंतनु किंजवड़ेकर। दिस इज रागम डीटीएच चैनल एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। He presents Raag Gujri Todi. Vilambit Gat set to Ek Taal and Drut Gat set to Teen Taal. He is accompanied on tabla by Shantanu Kinjavadekar.

ये था राग गुजरी तोड़ी। अपना बेला बहार वादन जारी रखते हुए बाबूलाल गंधर्व अब प्रस्तुत करते हैं राग जोग। मध्यलय गत रूपक ताल में निबद्ध है, ध्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग गुजरी तोड़ी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज बेला बहार रिसाइटल बाबूलाल गंधर्व नाउ प्रेजेंट राग जोग। मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड ध्रुत गत सेट टू तीन ताल।

ये था राग जोग। आप सुन रहे थे बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग जोग। यू वर लिसनिंग टू बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला by Shantanu Kinzavdekar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मारू बिहाग और राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं यज्ञ सेनी मजुमदार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं बाबू वर्धन. यज्ञ सेनी मजुमदार अपने गायन का आरंभ राग मारू बिहाग में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल, कलाकार यज्ञ सेनी मजुमदार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in the rag Maru Behag. Our artist this evening is Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar and on the harmonium is Babu Bardhan. Listen now to Khayal in the rag Maru Behag, our artist, Yagnaseni Mazumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी यज्ञसेनी मजुमदार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे बाबू वर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग रागेश्री। Our artist this evening was Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Sarkar and on the harmonium was Babu Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है माधुरी मट्टू का गाया राग कामोद. आप सबसे पहले राग कामोद में मध्यलय में ख्याल प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल है रुद बसंत सखी मोमन भावत जो कि तीन ताल में निबद्ध है. तत्पश्चात आप दादरा प्रस्तुत करेंगी जिसके बोल है नजर लग जाइए मोरे ललन को.

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे माधुरी मट्टो का गाया दादरा। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर की गाई ठुमरी, राग भैरवी पर आधारित यह ठुमरी दीपचंदी ताल में निबद्ध है। बोल है अब न बोलो मुझसे श्याम।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी शंकर की गाई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर की गाई ठुमरी, जिसके बोल है अबके सावन घर आना।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की गाई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया एक गजल जिसके बोल है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर का गाया गजल पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दुखा, सारंगी पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल द दुखा on the tabla and Samad Khan on the sarangi.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया न। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय आगम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग चंद्रकौंस. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं घनश्याम आए, और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं हरि हरि जपत नाम तेरो. तबले पर आपकी संगति है अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने, और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल जनरेशन इन राग चंद्रकौंस by Vidushi Shanno Khurana. The Vilambit Gat is said to Ektal. The words are Ghanshyam Aaye, and Dhrut Gat is said to Teental. The words are Hari Japat Naam Tero. He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla, on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami, and on harmonium by Rehman Qureshi.

0: अभी आप विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग चंद्रकौस सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग सावनी बिहाग। ठप ताल के बोल हैं जाने अकल सब और तीन ताल मुनिबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं नाद भेद अपरंपार। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारभूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने।
1: यू विल लिसन टू अ वोकल जनरेशन इन राग चंद्रकौंस बाय विदुषी शन्नो खुराना। नाउ लिसन टू अ राग सावनी बिहाग। द वर्ड्स ऑफ जप ताल आर जाने अकल सब एंड द वर्ड्स ऑफ ध्रुत रचना सेट टू तीन ताल आर नाद भेद अपरंपार। ही इज अकंपनीड बाय अख्तर हसन ऑन द तबला, ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन हारमोनियम बाय रहमान कुरैशी।

0: अभी आप विदुषी शन्नो खुराना का गाया रग सावनी बिहाग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a vocal rendition in rag Savani Bihag by Vidushi Shanno Khurana. He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla and on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami and on harmonium by Rehman Qureshi. This program is the presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।